होंगे तो बैठ जाए बातें, मन पे बात है, मिलने की रात है, तू क्यों दांत है।

तेरे मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए।

0: लहरों ने ताली बजाई है,
1: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है,
2: भर भर के कनक थाल, भर भर के कनक

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: राम जन्म की बधाई है, बधाई है। राम जन्म की बधाई है, बधाई है।

तुम आज पिछित हो जाओगे। मुझे मालूम अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ रे। मुझे मालूम अब न सताओ रे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था एक घटा।